0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
2: सड़कों से सीखा लेकिन बातें ऐसे जैसे गारा में कव्वाली। फटेगा आड़ा तो नीचे गड़ेगा, मेरे जैसा है कोई नहीं मोवाली। देंगे ये सलामी चलने को जगह।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. अब सुनिए ओलिव का जबरदस्त है

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।

Qatar's number one radio station. Radio Olive, 106.3 FM. Jio Bindaas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

लगाओ ये ये ये करके दिखाओ ये फिर ये अब ये ये ये कर...

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: हाय, दिस इज अमिताभ बच्चन एंड यू आर लिसनिंग टू रेडियो
0: बिंदास। आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 FM, Jio Bindas.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड दी हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.

खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: बिंदास कूल रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर
2: क्या बात है सर क्या पर ये बात है कूल सॉन्ग

गानों के साथ या हैप्पीनेस बढ़ रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: नमस्कार, मैं हूँ आर माधवन।
2: हाय, दिस इज विपाशा बासु।
3: हाय, आई एम लक्ष्मण राव।
4: हाय, मैं हूँ प्रियंका चोपड़ा।
5: हाय, दिस इज दिशा पार्डी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम।
0: Listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.

0: आपकी एक छोटी सी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है. सो स्प्रेड द हैप्पीनेस, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस. रेडियो ऑनर, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी. जियो बिंदास.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ओलिव 106.3 FM.

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: यार, कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
3: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई, वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
4: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

कंधों को किताबों के बोझ ने झुकाया, रिश्वत देना तो खुद पापा ने सिखाया। 99% मार्क्स लाओगे तो खड़ी वरना चढ़ी। लिख लिख कर पढ़ा हथेली पर अल्फा बीटा गामा का छाला, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 ने पूरा पूरा बचपन जला डाला।

0: गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: यार मुझे 10GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या, कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन। रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है। कॉल 4411133। ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा। नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम।
2: Hi, this is A.R. Rahman.
3: A.R. Rahman.
2: Radio. Listen to my songs on 106.3 Radio Olive.
3: Jio Bindas.
4: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian radio network.
5: I'm in number one Radio Olive.
6: Aap sun rahe hain Qatar ka number one radio station. Radio Olive 106.3 FM.

0: हैप्पीनेस बांटोगे तभी तो बढ़ेगी, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी, जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन, रेडियो ऑलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

0: your happiness frequency. Jio Bindas.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

0: कभी खुद के कंधे पर हाथ रखकर कहा है कि क्या काम किया छोड़े तूने? जनाब, खुद से हैप्पी रहोगे तभी तो हैप्पीनेस फैलाओगे, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटीजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।
1: Joy Alucas brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And

गानों के साथ या हैप्पीनेस बट रही है, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो पॉलिट, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

हैप्पीनेस फ्री में बट रही है, जितनी चाहो उतनी बटोर लो, क्योंकि हैप्पीनेस इज कंटेजियस। रेडियो ऑलिव, योर हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी। जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वेलविलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वेलविलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वेलविलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वेलविलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

अगस्त की और अपने शो की एक रोमांटिक से शुरुआत हमने कर दी है 1920 अ लव स्टोरी के ये खूबसूरत वाले गाने के साथ। वेलकम जी, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है। कैसे हैं आप लोग, कैसा रहा आपका वीकेंड फ्राइडे? एंड यार बहुत सारे लोगों का तो आज भी यू नो वीकेंड चल ही रहा है, छुट्टी पर ही है, लकी यू। सो क्या कुछ प्लान है और कल क्या कुछ किया है, इस पर आज जो है बहुत सारी बातचीत करेंगे। मैं हूँ आपकी कशिश, आपके साथ फुल ऑन टाइम जो है वो बिताऊंगी, आपसे यू नो सारी बातें करूंगी जितनी भी मैं कल नहीं कर पाई थी। कल टिकटॉक वाले शो में वैसे हमारी मुलाकात हुई थी, लेकिन बात हमने की थी टेक्नोलॉजी की, लेकिन मस्ती के मजे के तड़के के साथ आज जो है कंटिन्यू करेंगे अपनी बॉलीवुड की गपशप, अपनी फैशन की यू नो जितना भी ट्रेंड इस वक्त चल रहा है उन सब चीजों की बातों के साथ। फिलहाल देखिए एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, पहले ही गाना सुनकर आओ, उसके बाद जो है जल्दी से अपना फोन उठाओ और मुझे बताओ कि यार आपका वीकेंड कैसा रहा। 3311063 पर फिलहाल राघव जुआल की नई नवेली मूवी भाई तेरा स्टार हैगा, एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय करो और आपकी कशिश के साथ कहते रहो जियो बिंदास।

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: हाय, मैं हूँ विवेक आनंद ओबरॉय। यूर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव जियो बिंदास।
0: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क, कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क।

0: आपने मुझे मिस किया ना, बोलो हाँ कि हाँ, मतलब आपके पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। शर्वरी ने तो देखो मुझे ऐसे ही बात करना सिखाया हुआ है। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑल पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लाइफ मस्त है लेकर आ गई, जहाँ पे आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, शर्वरी का सबसे सबसे प्यारा अगर मुझे कोई गाना लगता है तो हाँ मस्कारा है अच्छा, लेकिन उससे पहले भी अगर कोई ऐसा गाना था जिसपे यू नो शर्वरी के अलावा मुझे मैं किसी और को इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ, तो वो था हाँ कि हाँ। सो जी, इस गाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि यार शर्वरी के बारे में और भी कुछ मुझे आपको बताना है, लेकिन वो मैं थोड़ी सी देर बाद आपको बताऊंगी, प्रॉमिस कर दिया है मैंने, लिख के रख लो कि कशिश ये आपको बताना है। फिलहाल बात कर लेते हैं मौसम की कि यार मौसम कैसा रहने वाला है। अब कल तो देखो क्या हुआ था कि कल ना मैं दोहा पोर्ट की तरफ गई थी शाम को, एंड यार इतनी ज्यादा ह्यूमिडिटी थी, लिटरली मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं किसी बाथरूम में खड़ी हूँ क्या। लेकिन फिर थैंकफुली हर जगह पर जो है ऐसी ऐसी जगहें हैं दोहा में जहाँ पर आप बैठ सकते हो, एसी है, सो उतना फर्क नहीं पड़ा। बट बाहर अगर मैं मौसम की बात करूँ तो वो थोड़ा सा गर्म हो जाता है। अभी का भी टेम्परेचर अगर मैं दोहा में बात करूँ तो 42 डिग्री सेल्सियस है, आज का हाईएस्ट टेम्परेचर 44 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, और आज का लोएस्ट टेम्परेचर 34 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। ह्यूमिडिटी एकदम पीक पे होने वाली है और हवा जो है वो 8 किलोमीटर पर आर की स्पीड से चलने वाली है। तो देखो यार, इस हीट को बीट करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि म्यूजिकल बीट्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, इसीलिए जो है आपके लिए मैं लेकर आ गई कूल सॉन्ग ऑफ द आर। सो इस हीट को जो है बीट कीजिए कूल सॉन्ग ऑफ द आर के साथ। फिलहाल मैं जो है जाती हूँ शर्वरी के बारे में एक जो खबर आपको देनी है वो लेकर आती हूँ। स्टे ट्यून्ड रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी बिंदास।
1: रेडियो ऑल पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आर।

ఓయ్ లక్కీ లక్కీ ఓయ్ సీ గానా ఆపన ఎంజాయ్ కియా 106.3 రేడియో ఎఫ్ఎం. मैं हूँ आपकी कंसिस्टेंस शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है. अब देखिए यार, जैसे मैंने जो है थोड़ी देर पहले आपको ये कहा था कि यार आने के बाद मैं एक बताऊंगी कि यार शर्वरी की कौन सी न्यू मूवी जो है वो आने वाली है. अब देखिए सिर्फ शर्वरी की नहीं, एक बहुत ही अमेजिंग डायरेक्टर जो है, प्रोड्यूसर जो है, वो भी अपना कमबैक कर रहा है. सूरज बजाजिया जी का नाम तो आपने सुना होगा, जिन्होंने हमें एपिक शादियों वाली मूवी दी है. मतलब अगर आप आंख बंद करके सोचो बॉलीवुड में किसी वेडिंग वाली मूवी के बारे में, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? हम आपके हैं कौन, या फिर हम साथ साथ हैं. और बस इसी मूवी के जो डायरेक्टर हैं, जो है ना, उन्होंने अपने प्रेम यानी अपनी एक आइकॉनिक कैरेक्टर जो सलमान भाई प्ले किया करते थे, उसे जो है वापस लाने का फैसला कर दिया. उनकी नई मूवी जो है प्रेम मोल लिया, इसकी जो शूटिंग है वो रैप हो चुकी है. एंड नवम्बर 27 में जो है 2026 पे हमें देखने को मिलने वाली है ये मूवी. एंड इस मूवी के मेन लीड्स कौन कौन है? नहीं, सलमान भाई बिल्कुल नहीं है, आयुष्मान खुराना एंड शर्वरी जो है वो इस मूवी में हमें देखने मिलेंगे. आयुष्मान खुराना एज प्रेम, आई डोंट नो कैसे हमें लगने वाले, क्योंकि हमें जो है सूरज बड़जातिया जी के साथ सलमान खान को देखने की आदत है एज प्रेम, पर कोई बात नहीं, इट्स ओके, चलता है. फिलहाल जो है एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके जो है रेडियो सेट पर, इस गाने को एंजॉय कीजिए. बाकी आप मुझे बता सकते हैं 3311063 पर मैसेज करके कि यार आखिर आपको क्या लगता है कि सूरज बड़जातिया की जो मूवी है जिसमें आयुष्मान खुराना हमें प्रेम के रूप में दिखने वाले हैं, क्या ये वर्क करेगी, क्या हमें अच्छी लग पाएगी? स्टे ट्यून्ड रहिए और कहते रहिए जुबिन दास.

भाई अरिजीत सिंह, क्या कर दिया आपने? मतलब आपको जो है हमने गाना जो है सिर्फ मेल पार्ट इसका गाने के लिए बुलाया था, ओवर पावर करने के लिए नहीं। वेलकम जी 106.3 रेडियो एल एफएम, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम, आपकी लाइफ का स्ट्रेस कम कर रहे हैं हम। अब देखिए यार, ये तो आपको पता ही है खैर कि मुझसे बात करने के बाद आपका स्ट्रेस जो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिससे आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा और ये मैं आपको रोज आकर बताती हूँ। तो आज भी एक ऐसा तरीका मैं आपके लिए लेकर आई हूँ और ये शायद आपको पता भी होगा। सो अगर आप छोटे मोटे स्ट्रेस से जो है वो जूझ रहे हैं या आपका जो ब्रेन है वो थोड़ा सा थक गया है, तो आपको जो है अपने किसी पेट के साथ जो है वो थोड़ा सा टाइम जो है वो स्पेंड करना है। वो पेट कोई भी हो सकता है। एंड इसके बाद क्या होता है ना कि आपकी बॉडी एक हैप्पी हार्मोन यानी ऑक्सीटोसिन जो है वो रिलीज करती है, जिसके बाद आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो कम हो जाता है। एंड कॉर्टिसोल कम होगा, आपका स्ट्रेस कम होगा, एंड इसकी वजह से बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स जो है वो हो जाते हैं। सो अनकंडीशनल लव जब आप यू नो अपने पेट्स को करते हो, किसी और के पेट को करते हो, तो फिर आपको अच्छा लगता है। सो अब अगर स्ट्रेस हो तो किसी भी पेट के पास जाना एंड उसको जो है थोड़ा सा वक्त देना, थोड़ा उसके साथ सब कुछ भूल के टाइम स्पेंड करना, आपको फॉर श्योर अच्छा लगने वाला है। देखो ये तो मेरा तरीका है, बाकी अगर आपके पास कोई ऐसा तरीका है जिससे आप अपने स्ट्रेस को रेगुलेट करते हो, कम करके रखते हो, तो वो भी आप मुझे बता सकते हो 3311063 पर मुझे मैसेज करके। सो जल्दी से आओ, मैसेज कर दो। वैसे इधर जो है मैसेजेस में कोई है जो ये कह रहा है कि कशिश आपकी आवाज रकुलप्रीत सिंह जैसी लगती है। यार ठीक है, मतलब रकुलप्रीत सिंह, वाओ गाइस, थोड़ा सा मैं नोटिस करके आती हूँ, रकुलप्रीत की एक आध वीडियो जो है मैं देख कर आती हूँ। आप तब तक जो है मैसेज करो मुझे और बताओ कि ये सही है या नहीं। 3311063 ये मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, आइए मैसेज कीजिए। फिलहाल ऑल फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आर आर आपकी रेडियो सेट पर एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओपन दास।

Yo te creo.

0: में जो है हम जा चुके हैं, वीकेंड की वाइब से बाहर नहीं निकले थे, ये सीधे जो है एकदम ही घूमते फिरते नाचते गाते पहुंच गए थे हम 90s वाली वाइब पे, लेकिन अब वापस आ जाइए आपकी कसूस के बाद। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो जो है आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो हाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ मैं। अब देखो यार क्या होता है ना कि कई बार जो पहली चीज होती है वो बहुत अच्छी होती है। आपके साथ भी हुआ होगा कि कभी आप किसी रेस्टोरेंट में गए हो, आपने कोई नई चीज ट्राई करी है ना, आपको बहुत अच्छी लगी है, लेकिन उसके बाद जब आप सेकेंड टाइम उसी रेस्टोरेंट में जाते हो और सेम डिश ऑर्डर करते हो तो आपको कई बार अच्छी नहीं लगती है। ये प्रॉब्लम हो जाती है कई बार हमारा वो जो फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो इतना अच्छा होता है कि सेकंड एक्सपीरियंस उसे ओवरपावर कर ही नहीं पाता है, और यही चीज होती है मूवीज के साथ भी। तभी हमें कई बार ऐसा होता है कि जब तक कोई मूवी सीक्वल जो है आती है तो हमें एक्सपेक्टेशंस इतनी बढ़ चुकी होती है कि वो मूवी कितनी भी अच्छी हो हमारी एक्सपेक्टेशंस को कभी मीट ही नहीं कर पाती है। और मुझे ऐसा लगता है कि यही होने वाला है एक और मूवी के साथ। अब मैं कोई वर्डिक्ट नहीं देना चाहती इसमें, लेकिन फिर भी आपको बस ये इन्फॉर्म करना चाहती हूँ कि एक हमारी बहुत ही फेवरेट मूवी का जो है सीक्वल आने वाला है। हाँ जी, सो लकी भास्कर मूवी जो 2024 में रिलीज हुई थी दुलकर सलमान की, जो हम सबने बहुत इंजॉय करी थी एंड अलग अलग लैंग्वेजेस में सबने देखी थी, वो मूवी जो है उसका सीक्वल आने वाला है। लकी भास्कर 2 जो है वो हमें देखने को मिलने वाली है, और ये बात जो है मूवी के जो राइटर और डायरेक्टर हैं वैंकी, उन्होंने जो है एकदम यू नो फाइनली बोल दिया कि आपको बहुत जल्दी लकी भास्कर 2 देखने को मिलने वाली है, एंड अब अगले 2 साल या 1 साल में जो है इसका प्रोडक्शन जो है वो बिल्कुल शुरू हो जाएगा। तो देखिए एक और मूवी का सीक्वल जो है वो हमें दिखने वाला है, अब देखते हैं होप क्या करना है, आई डोंट नो। मतलब मैंने बॉलीवुड की जितनी मूवीज देखी हैं जो इस वक्त आ रही हैं उनके तो सीक्वल खराब ही होते जा रहे हैं 2-3 को छोड़कर, पर बाकी देखते हैं, एक्सपेक्टेशन लो रखेंगे तो शायद मूवी अच्छी लग जाए। फिलहाल खुद को एक गाना डेडिकेट करते हुए जो है मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, कूल सॉन्ग ऑफ द आर आपकी रेडियो सेट्स पर। और अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ही खूबसूरत सी सुंदर सी आपकी दोस्त है, आपकी बहन है, आपकी यू नो कोई भी फीमेल फ्रेंड है, सो उन्हें बोल दीजिए कि रेडियो ऑन कर ले, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही अमेजिंग वाला गाना जो है मैं करने वाली। सो स्टे ट्यून रहिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

मन सब डोल रहा है क्योंकि अगस्त आ चुका है और ये खुशी कोई और कैसे समझ सकता है। मतलब जिसका बर्थडे अगस्त में नहीं आता है उस इंसान को मैं अपनी फीलिंग कैसे समझाऊं। हैंगआउट मेरे ऑफिस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो मेरी फीलिंग से रिलेट कर पा रहे हैं। पहली बार मेरे साथ ऐसा हो रहा है कि ये जो एक्साइटमेंट है ये एक ग्रुप प्रोजेक्ट की तरह लग रहा है कि सब अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे रहे हैं क्योंकि सबका बर्थडे अगस्त में आता है। मुझे नहीं पता था कि अगस्त इतना कॉमन महीना है जिसमें सबका बर्थडे आता है, लेकिन फाइनली अगस्त आ चुका है, मैं भी आ चुकी हूँ। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जो आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं। अब देखिए यार, अगस्त जो है वो बिल्कुल फटाक से आ गया। मतलब अभी मुझे जो है कल रात को अपने बेड पे जो है सोते सोते ये रियलाइज हो रहा था कि यार अभी तो मैंने फ्रिज में रखा हुआ न्यू ईयर की पार्टी का जो केक है, जो आया था वो जो ब्रेड वाला केक होता है, वही खत्म नहीं किया था, अभी अभी फेंका है वो एक महीने पहले क्योंकि फ्रिज साफ कर रहे थे, वो तक खत्म नहीं हुआ था। और जो है हम 8th मंथ में एंटर कर चुके हैं। मुझे रियलाइज़ नहीं हो रहा है कि कब जो है जनवरी में मैं पैकिंग कर रही थी कतर आने के लिए और अब अगस्त आ चुका है। सीरियसली इतना टाइम कैसे हो गया, मुझे तो नहीं समझ आ रहा है। आप लोगों को रियलाइज हो रहा है कि हम इस साल के 2026 के, जिसके लिए जो है हम मीम्स शेयर कर रहे थे, जहां हम रील्स बना रहे थे कि 2025 वाज लाइक दिस, 2026 जो है ऐसे होगा, मैनिफेस्टेशन करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और फाइनली अगस्त आ चुका है। मतलब यार जब तक ना जून जुलाई चल रहा होता है आपको ऐसा लगता है कि चलो ठीक है अभी तो साल बहुत बाकी है, अभी तो आधे रास्ते भी नहीं पहुंचे, लेकिन जैसे ही अगस्त में आप एंट्री मार लेते हो ना आपको ऐसी फीलिंग आने लग जाती है कि भाई 2026 भी जा रहा है हमने तो कुछ किया ही नहीं, जो प्लान किया था वो तो हुआ ही नहीं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूँ, रुको, जरा सबर करो, ठहरो, जरा पीछे मुड़कर देखो कितना कुछ चेंज हुआ होगा इस साल में, कितनी कुछ अचीवमेंट्स जो है वो आपने अपनी बुक में ऐड करी होंगी, कुछ यू नो लोस भी रहे होंगे लेकिन बहुत सारे हाईज भी रहे होंगे, उनके बारे में बात करते हैं। आइए 3311063 ये जो है मेरा व्हाट्सएप वाला नंबर है, 3311063, इस पर आकर जो है आप मुझे मैसेज कीजिए कि आपको क्या रियलाइज हो रहा है अगस्त आ चुका है एंड क्या कुछ आपकी फीलिंग्स हैं इसके बारे में मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इस हकीकत के बारे में बात करते हुए, तू ही हकीकत गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट पर जावेद अली की आवाज में, सो ये सोलफुल गाना जो है एंजॉय कीजिए और आपकी कसूस के साथ कहते रहिए जियो बिंदास। वेट करी हूँ मैं आपके मैसेज का।

इस गाने के लिरिक्स मुझे उतने ही समझ आते हैं जितना मुझे 2026 के बाकी महीने समझ आए हैं. इतने जल्दी जल्दी निकले हैं कि क्या बताऊं. वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर. मैं हूं आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूं लाइफ मस्त है, जहां आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूं मैं. अब देखिए यार, मैंने आपसे यही पूछा था कि यार देखो, मेरे लिए तो ऐसा लगा मुझे कि अगस्त इतनी जल्दी चला गया, मतलब इससे ज्यादा जल्दी अगस्त आ गया बोल रहे. देखा, दिमाग पे असर हुआ है मेरे. इतने जल्दी जल्दी महीने जाएंगे तो ऐसे ही होगा. मतलब अभी ही मैं कुछ महीने पहले इंडिया में बैकपैक कर रही थी कतर आने के लिए, एंड अब देखो अगस्त आ गया है. वैसे मैंने आप लोगों से भी पूछा था कि आप लोग बताइए आपका क्या कहना है कि महीने जल्दी जल्दी जा रहे हैं, अगस्त आ गया है, क्या कुछ प्लान किया है आपने. सो सामी जी ने जो है वो सबसे पहले तो मेरा हालचाल पूछने के लिए मुझे सलाम किया था और पूछा था कि कशिश यार क्या चल रहा है. मैं ऑफिस से बाहर आया तो सोचा आपसे यू नो हालचाल पूछ लूं. मैंने बोला बढ़िया है, एंड फिर सामी जी से पूछा कि यार आप बताइए आपका कैसा गया ये जो बाकी का साल है अगस्त से पहले वाला. तो उन्होंने कहा यार देखिए, हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह निकल गया, चल रहा है. और आने वाले भी इंशाल्लाह जो है अच्छे ही जाएं. देखिए बस अच्छा होप करने पर ही हम जो है ध्यान देंगे, बाकी सारी नेगेटिव चीज़ों को निकाल देना चाहिए. मोहम्मद यूसुफ खान साहब जो है उनसे, उन्होंने भी हमें मैसेज किया. उन्होंने भी कहा कि सही कहा कशिश आपने, बहुत जो है फास्ट गुजर रहे हैं ये महीने, देखते देखते अगस्त आ गया है, अभी 4 महीने जाएंगे और 2027 आ जाएगा. देखिए बस यही बात तो मैं आपको समझाना चाह रही थी. रवि जी ने खैर मुझे जो है हैप्पी बर्थडे का कशिश लिखा है इन एडवांस, थैंक यू सो मच. एंड दियार जी ने जो है एक बहुत ही प्यारी सी ऑडियो मुझे भेजी थी और उस पर उन्होंने लिखा था कि उसमें उन्होंने कहा था कि क्या मैसेज करें हम आपको, मैसेज जो है वो आपके सामने शर्मा जाता है. काश मैं भी थोड़ी सी मैसेज जैसी होती, मैं भी बाकियों के सामने शर्मा जाती तो मम्मी से मुझे इतनी डांट नहीं खानी पड़ती. खैर थैंक यू सो मच आप सबके इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस के लिए. खैर अगर आप लोग जो मुझे सुन रहे हैं और आपने मुझे मैसेज नहीं किया है तो 3311063 पर आकर जल्दी से मुझे मैसेज कर दो, क्योंकि यू नो जो अगला हमारा गाना है क्या कमाल है, गाने का नाम है. इस गाने के उस पार जो है मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि यार फैशन की दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है और क्या नया ट्राई कर सकते हो आप. सो फिलहाल ऑलिव फ्रेश सॉन्ग ऑफ द आवर जो है इंजॉय करके जरा वापस आइए, फिर हमारी बातचीत हम जारी रखेंगे. स्टे ट्यून और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जीवन दास.

देखिए सच में आप ये सोच भी नहीं सकते कि मैं कल क्या देख कर आई हूँ। हाँ जी, कल ब्रांड न्यू डे देखा है मैंने। आई मीन ब्रांड न्यू डे नहीं, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे देखा है कल मैंने। एंड मूवी तो देखो ऑसम है और ये तो आपको पता चली गया होगा इंस्टाग्राम से, आपके दोस्तों से, लेकिन एक बहुत ही अमेजिंग चीज मैंने नोटिस करी कि जितने भी लोग थिएटर में आए हुए थे देखने के लिए, उन सब ने कहीं ना कहीं कोई ऐसा आउटफिट पहना था जो थोड़ा सा स्पाइडरमैन की थीम के साथ जा रहा था। मतलब बिना बताए, बिना डिस्कस किए, पूरा जो थिएटर है वो वाइब कर रहा था, मैच कर रहा था स्पाइडरमैन थीम पर। और यार यही तो जो है फैंडम है स्पाइडरमैन का। एंड देखिए यार, मैं भी जो है मैंने कोशिश पूरी की थी कि मैं भी कोई ऐसा आउटफिट पहन के जाऊं जो कि स्पाइडरमैन से थोड़ा सा रिलेट कर जाए, बट कोई बात नहीं, होता है ऐसा, कई बार नहीं हो पाता है। खैर बात कर लेते हैं अब जरा सी फैशन की, क्या चल रहा है फैशन में। सो इसी पर बात कर रहे हैं हम कि स्पाइडर मैन से इंस्पायर्ड आउटफिट जो है वो इस वक्त सोशल मीडिया पे काफ़ी ट्रेंड कर रहे हैं। लोग दो दो शर्ट्स को जो है वो काट के मिला के उसको ब्लू और रेड में मर्ज करके पहन रहे हैं, एंड ये काफ़ी इन ट्रेंड है। सो अगर अभी तक आपने अपना स्पाइडर मैन इंस्पायर्ड आउटफिट नहीं लिया है तो किस चीज़ का वेट कर रहे हो, जल्दी से जाओ ले लो। फिलहाल एक अमेजिंग वाला गाना आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ तो कहते रहिए जियो बिंदास।

0: मम्मी अभी अक्सर यही कहती हैं कि इश्क की हवा लग गई है अब इन्हें, अब हमारी बात कहाँ सुनेंगे। और ये मम्मी जो है कहती थी जब हम पढ़ाई नहीं करते थे, खुद मम्मी जो है चार काम दे देती है कि बाहर से जाकर ये लेकर आओ, बाहर से जाकर वो लेकर आओ, किचन में मेरी हेल्प कर दो, और उसके बाद फिर कहती है कि यार पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो तुम, मम्मी गलत करते हो यार आप। 106.3 रेडियो ऑलिफ पर मैं हूँ आपकी कसूस एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रहे हैं हम। अब देखिए यार, मैंने जैसे आपको बताया कि कल जो है मैं स्पाइडरमैन देखने के लिए गई थी एंड और भी बहुत सारी चीज़ें गई करी मैंने। सो मैं जो है सबसे पहले मैंने यू नो मॉल ऑफ कतर गई एंड वहाँ पर जो है एक बहुत ही अमेजिंग स्टेज शो चल रहा था जहाँ पर अलग अलग आर्टिस्ट जो है वो जिमनास्टिक कर रहे थे, एक यू नो एक जंगल थीम पर सब कुछ हो रहा था एंड दैट वाज रियल फन। मतलब स्पाइडरमैन देखने के बाद आपका एक्सपेक्टेशन कितना बढ़ जाता है ना लाइफ से, कि आपको सब कुछ कितना फैंसी चाहिए होता है, कितना अच्छा चाहिए होता है। एंड उसके बाद मैं जब मॉल ऑफ कतर में थी एंड मैं जब यू नो नीचे उतर रही थी एंड मैंने ये सब बड़ी बड़ी स्क्रीन्स पर ये जिमनास्टिक्स होते हुए देखा एंड यू नो बहुत अलग परफॉर्मेंस चल रहा था, फ्लेक्सिबिलिटी और उसके साथ आर्टिस्ट जो है परफॉर्म कर रहे थे एंड आई वॉज लाइक कि वाह। स्पाइडरमैन देखने के बाद मुझे नहीं लगा था कि मुझे कोई चीज रियल लाइफ में इतनी अच्छी लग सकती है। मतलब एक जंगल थीम पर सब कुछ चल रहा था, बहुत बड़े बड़े ह्यूज प्रॉप्स थे, एक बहुत बड़ा सा क्यूट सा एलिफेंट था एंड उसके साथ फाउंटेन्स चल रहे थे, म्यूजिक चल रहा था एंड उसके साथ जो आर्टिस्ट थे वो परफॉर्म कर रहे थे। इट वॉज मतलब अमेजिंग अमेजिंग, मतलब मैं अगर अमेजिंग बोल रही हूँ किसी चीज़ को देख के तो आप मान जाइए, क्योंकि मैंने सब चीज़ें जो है अपनी इंस्टाग्राम पे देख ली होती है तो मुझे कोई भी चीज़ जो है ऐसा नहीं लगता है कि हाँ यार ये तो कितनी नई चीज़ है। लेकिन सच में रियल लाइफ में अपनी आंखों से वो परफॉर्मेंस देखना वॉज मतलब अलग लेवल का एक एक्सपीरियंस था। सो अगर आज भी ये परफॉर्मेंस होने वाला है, सो अगर आप मॉल ऑफ कतर जा रहे हैं सो एक बार ज़रूर मुझे बताइएगा कि कशिश हमने भी ये परफॉर्मेंस देखा। एंड शाम को कुछ 4:30-5 बजे के बाद जो है ये परफॉर्मेंसेस शुरू हुए थे, सो अगर आपको ये मिल जाते हैं तो वेर एंड गुड है। वैसे बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हो रही हैं कतर में जो आप वीकेंड पर यानी फ्राइडे और सैटरडे को इन्जॉय कर सकते हो, उस पर भी बात करेंगे लेकिन थोड़ी सी देर में। फिलहाल कूल सॉन्ग ऑफ द आवर आ रहा है आपके रेडियो सेट्स पर, इसे एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं.

यार लोगों और वाइब के अलावा अगर कोई एक ऐसी चीज है जिस वजह से मुझे कतर बहुत ज्यादा पसंद है, वो है यहाँ पे इवेंट्स जो है वो बड़े ही कमाल के होते रहते हैं, एंड आपका वीकेंड जो है वो किसी भी तरीके से वेस्ट नहीं हो सकता। वेलकम जी 106.3 रेडियो ऑलिव पर, मैं हूँ आपकी कशिश एंड शो आपके लिए लेकर आ गई हूँ लाइफ मस्त है, जहाँ पर आपकी लाइफ को थोड़ा एक्स्ट्रा मस्त बना रही हूँ। अब देखिए यार, कल अगर आपने अपना दिन काम करने में वेस्ट कर दिया और अब आप सोच रहे हो कि यार आज का दिन है, आज क्या किया जा सकता है, कैसे अपने यू नो वीकेंड को हैपनिंग बनाऊं क्योंकि कल से वापस एकदम यू नो जुझारू वाले काम पे लौटना है, सो आपके लिए कुछ ऐसी एक्टिविटीज हैं कतर में जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंजॉय कर सकते हो। सो सबसे पहले तो दोहा शॉपिंग सीजन 2026 जो है वो चल रहा है दोहा एग्जीबिशन एंड कन्वेंशन सेंटर पर, जो कंप्लीटली फ्री है, सुबह 10 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक आप यहां जाकर इंजॉय कर सकते हो, एंड ह्यूमिडिटी की भी चिंता नहीं होगी बिकॉज एयर कंडीशनड है, तो सब कुछ बढ़िया रहेगा। कतर नेशनल लाइब्रेरी और एजुकेशन सिटी में जो है आर्किटेक्चरल मास्टरपीस जो है आपको फ्री एंट्री वहां पर मिल सकता है, तो वहां पर जाकर आप फन कर सकते हो। लग्जरी मॉल आर्किटेक्चर वॉक अगर आपको लेनी है तो आप विंडम मॉल जा सकते हो, जहां मैं पिछले यू नो हफ्ते गई थी एंड मैंने एक बहुत ही अमेजिंग बिस्कॉफ केक खाया था एंड वहां फोटोज भी बहुत अमेजिंग आई थी, तो एक बार जाओ। उसके बाद हमारी कुछ कटारा कल्चरल विलेज एंड सूक वाकिफ पे तो अमेजिंग यू नो वाइब रहने ही वाली है आज भी, सो इन सब जगहों पर आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई ऐसी जगह पता है जहां पर मुझे जाना चाहिए सो वो भी आप मुझे आके बता सकते हो 3311063 पर। फिलहाल देखिए मैं चलती हूँ, अमेजिंग वाले गाने आ रहे हैं आपके रेडियो सेट्स पर, इन्हें एंजॉय कीजिए और आपकी कशिश के साथ कहते रहिए जी ओ बिंदास।

चलिए जो तो फिर आपको जो है टाटा बाय बाय करके यहाँ से निकलने का वक्त आ गया है. सो मैं यहाँ से चलती हूँ. मुलाकात होगी कल सेम टाइम पे यानी 10 बजे लाइफ मस्त है शो में. मैं हूँ आपकी कजन शो. आप मेरे साथ लाइफ मस्त एंजॉय कर रहे थे 106.3 रेडियो ऑलिव पर. लेकिन अब जाते जाते मैं वही कहूंगी जो हर रोज कहती हूँ कि अपना बहुत सारा ख्याल रखिए. खाना खाते रहिए, पानी पीते रहिए, गाड़ी धीरे धीरे हौले हौले चलाइए, सनस्क्रीन लगाना बिल्कुल मत भूलना और मुझे याद करते रहना. रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर आप हम सारे आरजेस को जो है फॉलो कर सकते हो और रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम हैंडल पर हम अमेजिंग कॉन्टेंट जो है वो पोस्ट करते रहते हैं. उसे लाइक कर सकते हो, फॉलो कर सकते हो. एंड 3311063 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है. इस पर आकर जो है आप हमें जब भी जो भी मैसेज करना चाहे वो कर सकते हैं. फिलहाल मैं चलती हूँ. मुलाकात होगी अब कल. स्टे ट्यून्ड और कहते रहिए आपकी कशिश के साथ. जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
0: ओलिव म्यूजिक मैराथन, एक घंटा नॉन स्टॉप बैक टू बैक।

आप सभी का स्वागत है स्वागत है स्वागत है स्वैग के साथ स्वागत है। ये है रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूँ आपका मेजबान सुदेव और आप सुन रहे हो ऑलिव रिचार्ज। तो भाई कुर्सी की बेड़ी बांध लीजिए, नहीं बांधी तो बहुत ही बढ़िया तरीके से कस के बांध लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हम एक जर्नी किक स्टार्ट करने वाले हैं जहाँ पे हम गुफ्तगू करेंगे, गाने सुनाएंगे, गुनगुनाएंगे और ढेर सारे किस्से खबरें कहानियां शेयर करेंगे, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपके साथ वक्त बिताएंगे। तो हम ये जर्नी शुरू करने वाले हैं, आप भी अपने मैसेजेस का सिलसिला शुरू कर दीजिए। 3311063 पर मुझे मैसेज कीजिए, बताइए मुझे क्या हाल है, कैसा चल रहा सब कुछ। और यही बोलते हुए चलिए शुरू करते हैं ऑलिव रिचार्ज को। स्टे ट्यून्ड, यह रेडियो ऑलिव 106.3 FM। जियो बिंदास।

0: अरे भाई, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डीप इनसाइट आपके साथ मैं शेयर करना चाहूंगा। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बाल कटाना इज नॉट अ स्मॉल टास्क, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर ढंग से बाल नहीं कटे ना, तो फिर भाई कॉन्फिडेंस की धजियां उड़ जाती है और मूड खराब हो जाता है और आगे वाले लोग भी चिढ़ाने लग जाते हैं। तो बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है। और मैं अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं किसी नई जगह जब भी जाता हूं तो मैं थोड़ा ऐसे सर्वे करता हूं कि हाँ भाई कहाँ पे ठीक सा है, कौन सा है, ऐसे बात बात करता हूँ, स्टाइल वाइल देखता हूँ, ठीक है। तो पहले के 2-3 बार मुझे थोड़ा झेलना पड़ता है ताकि मैं आने वाले 2 साल तक बढ़िया दिखूं, ठीक है। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट है जिससे आप बाल कटा रहे हो। अगर वो बंदा ढंग का नहीं निकला, आपके स्टाइल के हिसाब से नहीं काट पा रहा, तो फिर दिक्कत जाती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चॉइस है जो बहुत लोग समझ नहीं पाते, और जो समझ जाते हैं वो गेम खेल जाते हैं बढ़िया तरीके से। मगर इसमें भी टेक्नोलॉजी ने इंटरवेंशन कर दिया है दोस्तों, इसके बारे में हम बात करेंगे थोड़ी देर में। अभी फिलहाल गाने सुनते हैं, एंजॉय करते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh fish on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama. Just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience. Serve with pride. Danadal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souk Waqif Alkhol.
2: Only laga aur ho ja recharge. Olive recharge.
0: Olive recharge. रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
3: दिस आवर इज ब्रॉट टू यू बाय
1: मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स द रिस्पांसिबल ज्वेलर मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स की हर ज्वेलरी पीस एथिकली सोर्स्ड होती है और आती है मलाबार प्रॉमिस के साथ जहां मिलती है कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी और भरोसा

भाई बाल कटाना इज नॉट अ सिंपल टास्क, इसके बारे में हमने बात की थी। मैंने ये भी बोला था कि टेक्नोलॉजी वहां पे भी आ चुकी है। दोस्तों आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि बाल कटाना कोई छोटा टास्क नहीं है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है, उसमें बहुत सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं। और जब तक ढंग का बंदा नहीं मिलता हमें बाल काटने के लिए, तब तक हम सेटिस्फाइड नहीं होते। देखिए इस एक एरिया में भी टेक्नोलॉजी ने इंटरवीन कर लिया है। एक रोबोटिक बार्बर जो है मार्केट में आने वाला है, ऐसा देखने को मिला मुझे, जहां पे बंदा बैठा है एक मशीन के नीचे और मशीन एकदम चकाचक करके बाल काट रहा है। और मैं सच बताऊं अचंभित हो गया, चकित रह गया। मैं सोचा कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि मेरी मानो मैं तो 100 बार सोचूंगा ऐसे मशीन के नीचे बैठने से कि भाई ये ढंग से काटेगा नहीं काटेगा, मुझे क्या श्योरिटी है नहीं है करके। वो याद है पहले पहले जब वो चक्की होता था घर में, ठीक है, आटा पीसने के लिए, सब पीसने के लिए, जब मिक्सर आया ग्राइंडर आया तो दादी माँ बोलती थी इसमें वो स्वाद नहीं आ रहा करके, समथिंग लाइक दैट। बढ़िया, क्या आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बाल कटाने के लिए बैठ जाओगे एक मशीन के नीचे, बताइए मुझे 3311063 पर। फिलहाल यही बात करते हुए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदा।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

अगर आप गाड़ी चलाते हुए मेरी बात सुन रहे हो तो ध्यान से सुनना, और आप गाड़ी नहीं चला रहे हो तब भी ध्यान से सुनना। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। अगर आप अपने गाड़ी के केयर के प्रति बहुत ही एफर्ट्स डालते हैं तो ये चीज आपके लिए है। आप आज के आज जा सकते हैं AMTC वाल्वोलीन सलवा रोड पर, जहां पे आपको प्रीमियम क्विक सर्विस मिलेगा, और यहां पे ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं जो सिर्फ जेन्युइन वाल्वोलीन लुब्रिकेंट्स, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर यूज करते हैं। और उसके साथ साथ माइंड ब्लोइंग बात यह है कि वहां पे डिजिटल कार पासपोर्ट है, विच मीन्स ANPR टेक्नोलॉजी से आपके गाड़ी की जो कंप्लीट हिस्ट्री है, मेंटेनेंस हिस्ट्री है, वो मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पे कैच भी है, अगर आप वहां जाके ऑयल चेंज कराते हैं तो आपको वाल्वोलीन का मर्चेंडाइज भी मिलेगा। मैं एक नंबर बता रहा हूँ, आपको नोट कर लेना, और आप कॉल कर सकते हैं इस नंबर पे 7765-5954, 7765-5954। इस नंबर पे कॉल कीजिए और बोलिए रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: ऑलिव रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

0: You are listening to Qatar's number one radio station, Radio Olive 106.3 FM, Jio Bindaas.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर।
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है। ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ।
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है।
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है।
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए। अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो।
3: ऑलिव लगा और हो जा रिचार्ज। ऑलिव रिचार्ज।
0: ऑलिव रिचार्ज। रेडियो ऑलिव 106.3 FM पर जियो बिंदास।
3: ऑलिव रिचार्ज।
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

जाकिर खान ने एक बात बोली थी कि बादल बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू। जी हाँ, फ्लाइट में जाते वक्त अगर विंडो सीट मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है, क्योंकि बादल बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और मैंने सोशल मीडिया में एक पोस्ट देखा था जहां पे एक एयरलाइन ने अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए काफी माइंड ब्लोइंग एक एक्सपीरियंस जो है तैयार किया है। तो उस वीडियो का टाइटल ये था कि इफ यू डोंट हैव अ विंडो सीट डोंट वरी, एवरी सीट इज अ विंडो सीट, क्योंकि आप अपने सीट पे बैठे बैठे विंडो के बाहर क्या है बिल्कुल बढ़िया तरीके से देख सकते हैं, क्योंकि उस साइड में कैमरास लगे हैं जो आपके लिए लाइफ टाइम पे वो रिकॉर्ड करके दिखा दे। और मैं सोचा कि भाई यही तो है कस्टमर सेटिस्फेक्शन, यही तो चाहिए। मतलब मुझे काफी अच्छा लगा यार, क्योंकि देखो मैं भाई जाकिर भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ, हम गुरुजी मानते हैं उन्हें, उन्होंने बोला है बादल इम्पोर्टेंट है बाबू, बादल इम्पोर्टेंट है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: रिचार्ज रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास रिचार्ज.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewelry piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहां मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑलिव 106.3 एफएम। मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे ना एक छोटा सा थॉट मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। यार देखिए, कई बार ना इंसान खुद को बहुत छोटा बना देता है, अपने सपनों को बहुत छोटा बना देता है, और थोड़ा छोटा एक्ट करने लग जाता है। तो मैं यही बोलूंगा कि भाई नहीं करना है ऐसा, ठीक है? सोच के देखिए यार, भगवान ने इतनी बढ़िया जिंदगी दी है, ऊपर वाले ने इतना बढ़िया हमें कैलिबर दिया है, थोड़ा बड़ा सोचिए, थोड़ा बड़ा सपना देखिए, शायद जो हम चाहते हैं, जो हम सपना देखते हैं, वो पूरा हो जाए। और मैं आपको बता दूं कि भाई हिम्मत जो जो दिखाता ना इस दुनिया में, वही आगे बढ़ पाता है। और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

0: हर दोपहर 2 से 5 विद आरजे सुबे रेडियो ओलिव 106.3 एफएम पर जियो बिंदास.
1: This hour is brought to you by
2: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds की हर jewellery piece ethically sourced होती है और आती है Malabar Promise के साथ, जहाँ मिलती है complete transparency और भरोसा.

वेलकम बैक, यू आर लिसनिंग टू रेडियो ऑल 106.3 FM. मैं हूं आपका मेजबान सुदेव, और यहां पे मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप आज के दिन या फिर आने वाले दिन में वेल्वोलिन AMTC सलवा रोड विजिट कीजिए, क्योंकि आपके गाड़ी का ख्याल बहुत ही बढ़िया तरीके से वो रख सकते हैं. वहां पे अगर आप जाएंगे तो आपको भाई इतना मस्त एक्सपीरियंस मिलेगा, आप सोचोगे कि यार मेरा गाड़ी जो एक केयर डिजर्व करती थी अब जाके उसे मिला है. जी हाँ, वहां पे प्रीमियम क्विक सर्विस है, उसके साथ साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो काफी बढ़िया तरीके से ट्रेन्ड हैं, जो सिर्फ जेन्युइन वेल्वोलिन लुब्रिकेंट्स, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं. सबसे अमेजिंग बात यह है कि वहां पे है डिजिटल पासपोर्ट. ANPR टेक्नोलॉजी से कंप्लीट हिस्ट्री जो है आपकी गाड़ी के मेंटेनेंस की मेंटेन कर पाएंगे, एंड आप वहां जाके अगर ऑयल चेंज करवाते हैं तो आपको एक बहुत ही बढ़िया वेल्वोलिन का मर्चेंडाइज भी मिलेगा. मैं एक नंबर देता हूं आपको, आप नोट कर लीजिए, 7765-5954, 7765-5954. इस नंबर पे कॉल कीजिए और बोलिए रेडियो ऑलिव से सुदेव भाई ने बोला था कॉल करने के लिए. और आप विजिट भी कर सकते हैं वेल्वोलिन AMTC सलवा रोड में. और यही बात बोलते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास.

0: listening to Radio Olive 106.3 FM Jio Bindas.
1: लाइफ 24/7 चलती है तो डेंटल केयर सिर्फ ऑफिस आवर्स में क्यों मिले? नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर सी रिंग रोड का डेंटल डिपार्टमेंट अब है 24/7 ओपन. रूटीन केयर, ट्रीटमेंट या डेंटल इमरजेंसी, एक्सपर्ट डेंटिस्ट और एडवांस फैसिलिटीज के साथ केयर हर वक्त अवेलेबल है. कॉल 4411133. ऑल्सो विजिट आवर डेंटल सेंटर्स इन अजीजिया और मुंतजा. नसीम सर्जिकल एंड मेडिकल सेंटर, हेल्दी स्माइल्स एनी टाइम.
2: Hi, this is Deepika Padukone.
3: Deepika Padukone.
2: Radio Olive 106.3.
4: I'm in number one. Radio Olive.
0: Olive Suno Radio Network. Qatar's number one Asian Radio Network.
5: Olive laga aur ho ja recharge.
4: Olive recharge.
6: This hour is brought to you by
7: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

0: आप सभी को याद होगा शायद, जब इलॉन मस्क जो है साइबर ट्रक को लॉन्च कर रहे थे पहली बार, उन्होंने एक चीज फेंका और उसका विंडशील्ड टूट गया, कुछ ऐसा ही हुआ। आप सुन रहे हो रेडियो ऑलिव 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। तो एक टेक कन्वेंशन में एक ह्यूमनॉइड रोबोट ने एक ह्यूमनॉइड को जो है लॉन्च कर रहे थे और उसके फंक्शनैलिटीज को दिखाते वक्त वो एकदम से ठप करके गिर पड़ा। पहले तो लोगों को लगा कि कहीं स्टेज फ्राइट तो नहीं हो गया, पर बाद में पता चला भाई उसका जो सिस्टम है वो शटडाउन हो गया था, एकदम से टेक्निकल ग्लिच आ गया था। सोच के देखिए, लाइव बिल्कुल सही चल रहा है और एकदम से खराब। और मुझे लगता है कि इंसानों का जो स्टेज फ्राइट का इशू है ना, शायद धीरे धीरे रोबोट्स में भी आने लग गया है। आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द

0: सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: अरे इतना सारा डेटा और कॉल्स कैसे मिल गया रिचार्ज में?
2: ओरिडो के योर स्पेशल ऑफर से रिचार्ज करने पर.
1: योर स्पेशल ऑफर?
2: हाँ, ये एक हाला ऑफर है जो स्पेशली मेरे लिए बना है. ज्यादा वैल्यू और वही बेनिफिट्स जो मैं एक्चुअली यूज करता हूँ.
1: वाह, ये तो मेरे रेगुलर रिचार्ज से काफी बेटर लग रहा है.
2: बिल्कुल, मेरे नीड्स के हिसाब से परफेक्ट है.
1: ओरिडो का योर स्पेशल ऑफर, यानी वो ऑफर जो बनाए गए खास आपके लिए. अभी ओरिडो ऐप पर चेक करें या अपने नियरेस्ट रिटेलर पर जाएं. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडो.
3: अब देर लगा और हो जा रिचार्ज. ओलिव रिचार्ज.
0: ओलिव रिचार्ज. रेडियो ओलिव 106.3 FM पर. जियो बिंदास.
3: ओलिव रिचार्ज.
4: This hour is brought to you by
5: Malabar Gold and Diamonds, the responsible jeweler. Malabar Gold and Diamonds ki har jewelry piece ethically sourced hoti hai aur aati hai Malabar Promise ke saath, jahan milti hai complete transparency aur bharosa.

आप सुन रहे हो रेडियो ऑल 106.3 FM, मैं हूं आपका मेजबान सुदेव। और यहां पे एक चीज मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, वो है कि अगर आपने अभी तक रेडियो ऑलिव के इंस्टाग्राम पेज को फॉलो नहीं किया तो जानी क्या किया ये? ऐसे थोड़ा ना करते हैं, सीधा जाइए खोलिए इंस्टाग्राम radioolive.qa, सर्च कीजिए, हमारे पेज को चेकआउट कीजिए, फॉलो बटन दिख रहा है तो दबाइए, एक ही बार दबाना ठीक है, दो बार भी एक ही बार दबाइए। उसके साथ साथ हमारे पोस्ट के साथ आप इंटरेक्ट कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सेव कीजिए, आप स्टोरी डालिए, हमें टैग कीजिए, हम भी रीशेयर करेंगे। उसके साथ साथ एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स जो यहाँ पे हैं या फिर इस दुनिया में कहीं पे भी हैं उनको हमारे बारे में बता सकते हैं, हमारे ऐप के बारे में बता सकते हैं जो आप प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि वो भी हमारे साथ इस जर्नी में एक हिस्सा बन पाए। और यही बात याद दिलाते हुए हम भी आगे बढ़ते हैं और कहते हैं जियो बिंदास।

तो भाई धीरे धीरे टाटा बाबाई करके निकलने का वक्त आ चुका है, क्योंकि 5 बजने वाले हैं और पार्टी तो चलती रहेगी और जबरदस्त इवनिंग्स आने वाला है। तो भाई खुली बाहों से आप जो है सिमरन का स्वागत करना, जितना प्यार मुझे दिया है उतना और उससे ज्यादा प्यार देना। और जाते जाते जाते ही हम यही याद दिलाना चाहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, अपने खास लोगों का ख्याल रखिए और हमें जरा दुआओं में याद रखिए। आप सुन रहे थे ऑलिव रिचार्ज ओनली ऑन रेडियो ऑलिव 106.3 FM। मैं था आपका मेजबान सुदेव। जियो बिंदास।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ।
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं। कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले।
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है।
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ।
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर। अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज। क्लेम करो ओरिडू ऐप पर। एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू।

तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग वो शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ऑलिव जियो।

भाई ये वही वीकेंड है जिसके लिए मैं इतना ज्यादा एक्साइटेड थी कि भाई वीकेंड आ गया, वीकेंड आ गया, चला गया यार। इतना छोटू सा वीकेंड नहीं चाहिए, बहुत बड़ा वीकेंड चाहिए मुझे। लेकिन फिर सोचती हूँ कि अगर बड़ा वीकेंड मिल गया तो फिर आप लोगों के बगैर कैसी रहूंगी यार। मैं बकबक किए बगैर रह नहीं सकती, और मेरी बकबक तो आप ही सुनते हो यार। चार घंटे अपनी ये जबरदस्त इवनिंग शुरू हो जाएगा। मैं कहती सोने के दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन कौर आ चुकी है। हैप्पी सैटरडे, हैप्पी वीकेंड। अभी भी बचा हुआ वीकेंड जो है वो आप लोगों के लिए बाकी है, लेकिन बाकी आपके दिल में मेरे लिए प्यार है। फ्राइडे की फ्राइडे जब मेरा शो नहीं होता तो खत्म तो नहीं हो जाता ना। सो या बताइए आपका आज का दिन कैसा रहा और वीकेंड कैसा रहा। 3311063 पर आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: बात ये है कि आज 1 अगस्त है और अगस्त का महीना स्टार्ट हो गया है। इसलिए भी खास है क्योंकि अगस्त का मंथ हो जाए मेरा बर्थडे मंथ होता है, तनीषा का बर्थडे मंथ होता है और कशिश का बर्थडे मंथ होता है, तो हम तीनों सुपर डुपर एक्साइटेड हैं क्योंकि हमारा बर्थडे जो है वो आस पास ही आता है। सो या चिल्लम पुकार जो है वो लड़कियों की यू नो ऑफिस में मची रहती है। तो और बताओ आपका वीकेंड जो था वो कैसा रहा, क्या किया आपने वीकेंड पे? नींद पूरी थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, इस वीकेंड भी मेरी नींद जो थी वो पूरी नहीं हुई। दो मुझे फ्राइडे में मैं सो ली, लेकिन क्या हुआ कि जब आप दिन में सो लेते हो तो रात में आपके दोस्त लोग जो है वो आपको स्पॉइल कर देते कि भाई तो दिन भर सो लिया अभी तो निकल। मैं बोलती हूँ कि भाई सैटरडे मेरा ऑफिस है मुझे तो जाना है, दे आर लाइक नो। तो मैं मतलब फ्राइडे लेट नाइट जो 3 बजे के अराउंड जो था वो सोई एंड मैं सुबह 6 बजे उठ गई, तो मेरी भी नींद जो है उसकी तो बैंड ही बच चुकी है। लेकिन उस बीच में मैंने क्या किया कि मैं इतनी लेट जो थी वो सोई, मैं आपको वापस लौट के बताऊंगी। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कर के देखो जियो बिंदास। बाय द टाइम आप भी मुझे बता सकते हैं आपके वीकेंड के बारे में 3311063 पर जियो बिंदास।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: बड़ी मूवी रिलीज होती है ना तो उसके स्पॉइलर भी बहुत जल्दी आने लग जाते हैं, तो उसके लिए आपको पहले वो फिल्म देख लेनी पड़ती है। आपके साथ, और आपको पता है कि भाई स्पाइडरमैन जो है वो फिल्म देखने के लिए सब लोग बेकरार थे और बड़ा इंतजार था, तो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ऑलमोस्ट सारे लोगों ने देख ली, और जिन्होंने नहीं देखी है मैं उनसे यही बोलूंगी कि सोशल मीडिया भाई बहुत बुरी चीज है इस मामले में कि स्पॉइलर आपको मिल जाते हैं, तो आप जो है वो फिल्म जाके देख लीजिए। और मैं सिर्फ इतना बोलूंगी कि ये फिल्म आप एकदम बड़े पर्दे पे बढ़िया मतलब वॉक्स एंड ऑल या 4DX इस पे जाके देखिएगा, आपको बड़ा मजा आने वाला। सो फाइनली ये फिल्म मैंने लेट नाइट शो देखा मैंने फ्राइडे नाइट का, और बड़ा मजा आया टू बी वेरी ऑनेस्ट। स्टार्टिंग से लेके एंड तक फिल्म जो है वो बढ़िया मजेदार माहौल जो है वो बना के रखती है। लास्ट में मैंने थोड़ा सा ऐसा फील किया था कि बहुत तगड़ी बगड़ी फाइट होने वाली है, लेकिन ना पीसफुली जो है चीजें एंड हो गई। मैं आपको कोई स्पॉइलर नहीं दे रही हूं, लेकिन या इसमें आपको पता है कि मेरा फेवरेट कैरेक्टर है एक हल्क, ओ माय गॉड, उसको देख के तो ऐसा मेरा दिल खुश हो जाता है यार। तो आप फिल्म देखेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा, मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ, जरूर देखो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।
1: हाजिर है हुस्न इश्क की महफिल में आज फिर, हाजिर है

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: यार मुझे 10 GB फ्री मिला मेरे हाला रिचार्ज के साथ.
2: क्या कैसे?
1: बस रिचार्ज करो और तुम्हें फ्री डेटा या मिनट्स मिलते हैं. कल मुझे 50 फ्री मिनट्स मिले.
2: रोज मिलता है क्या?
1: हाँ रोज मिलता है.
2: मैं भी अपना हाला नंबर रिचार्ज कर रहा हूँ.
1: योर डेली सरप्राइज इज हियर. अपना हाला रिचार्ज करो और पाओ फ्री डेटा या मिनट्स का सरप्राइज. क्लेम करो ओरिडू ऐप पर. एक्सपीरियंस मोर विद ओरिडू.
3: Joy Alucard brings you the joy of summer. The coolest deals on jewelry purchases for this summer are here. Free cash vouchers on your diamond jewelry purchases. 3.99% onwards assured lowest making charges. And 0% deduction on all gold exchange. And much more only at Joy Alucard. Planning a trip to India? Make it even more rewarding with up to 15% savings on import duty on all jewelry purchased from Joy Alucard in the GCC. These exclusive summer offers are valid only until 8th August. Terms and conditions apply. Joy Alucard, world's favorite jeweler.
4: Iske स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के. तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
5: आरजे सिमरन के साथ.
6: Zabardast evening. Make you drive golden with.
7: Biggest jewelry festival is now happening at Joy Alucard. Joy Alucard brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
8: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores. Where the world comes to shop.

0: मैं हूँ सारिका
1: सारिका
0: आप मुझे सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3
2: ओलिव सुनो रेडियो नेटवर्क कतर्स नंबर वन एशियन रेडियो नेटवर्क रेडियो

भाई साहब, गर्मी जो है अपने कतर में बढ़ती जा रही है, और ये पता है जो लोग काफी टाइम से कतर में रहते हैं। भाई गर्मी जो है वो ऐसी ही होती है और ह्यूमिडिटी अलग लेवल पे होती है। सो गर्मी सिर्फ कतर में नहीं है, बाकी जगह भी जहां पे भी होती है वहां पे भी बहुत ज्यादा होती है। मैं चाइना के बारे में पढ़ रही थी, कहती थी कि चाइना में जब समर आता है ना, तो ऐसे टाइम पे आपको पता है कि हीट जो है वो बढ़ जाती है, और आपको लगता है कि भाई जो आपने कपड़े पहने हो वो भी किसी तरीके से जो है वो उतर जाए, जिससे गर्मी जो है वो आपको कम लगे। सो समर में जो चाइना में मेन रहते हैं, जो मर्द लोग रहते हैं, वो अपनी शर्ट्स को जो है वो रोल कर लेते हैं, सो जिससे उनकी बेलीज जो है वो दिखती है। सो इस चीज को, क्योंकि हीट बहुत ज्यादा होती है, तो टू कूल डाउन द हीट, मतलब कपड़ जो है वो ऊपर रोल कर लेते हैं, तो उनके जो पेट है वो दिखता है, जिसको बोलते हैं बीजिंग बिकनी। मेरे को पता नहीं था ये बीजिंग बिकनी करके भी कोई चीज होती है, तो ये पॉपुलर है समर में। जो इनकी स्ट्रीट हैबिट है कि भाई चाइना के बंदे जो रहते हैं वो अपने पेट से जो है कपड़े रोल कर लेते हैं, ताकि गर्मी जो है वो बहुत ज्यादा है, तो इससे थोड़ा सा उनको आराम मिल सके। इस सिमरन कौर आपके साथ, बिंदास।

0: You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Jio Bindas.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

0: Manila's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Gio Bindas.
1: Namaskar, my name is Ashish Vidyarthi and you're listening to Qatar's topmost Hindi FM channel 106.3 Radio Olive, Gio Bindas.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
3: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
4: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: यार बड़े क्यूट हो यार, इतने प्यारे प्यारे मैसेजेस आप भेजते हो।
1: Gen Z decoded. ऐसे ही है क्या?
0: आप लोगों के मैसेजेस जब मैं पढ़ती हूँ तो रिप्लाई करती हूँ, और मैं लिटरली आप लोगों के मैसेजेस पढ़ पढ़ के मुस्कुराती रहती हूँ। थैंक यू सो मच। सो या लिविंग रेंट फ्री, सो लिविंग रेंट फ्री जो है वो एक्चुअली जो ये सुनाई दे रहा है वो वैसा नहीं है। वो ऐसा है कि किसी चीज के बारे में आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं और मतलब सोच ही जा रहे हैं, तो वो चीज जो है वो आपके दिमाग में जो घर कर गई है उसको बोलते हैं आप लिविंग रेंट फ्री, जो कि Gen Z जो है स्लैंग है जिसको यूज करते हैं। तो आप भी यूज कर सकते हैं। सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, गौर गहते रहिए जियो बिंदास।

0: लोग सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM
1: रेडियो ओलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है कूल सॉन्ग।

आपकी बेबी डॉल का ख्याल रखना आपके हाथों में यार। बोले तो आपकी कार में गिरी सोनियों के साथ की हालचाल सत श्री अकाल सिमरन कौर आपके साथ और आपकी बेबी डॉल को आपको देनी है प्रीमियम केयर जो कि आपको वेल्वोलिन एएमटीसी प्रीमियम क्विक सर्विस जो है वहां पर मिलेगी सलवा रोड पर। ठीक है, तो जरूर ये सर्विस चेक करिएगा। ऑयल चेंज करवा रहे हैं ना, मान लीजिए आप अपनी गाड़ी का, तो आपको एक स्पेशल गिफ्ट जो है वो उनकी तरफ से मिलेगा। बट आप एक काम करिए, इनके शोरूम विजिट करेंगे या फिर आप इनको कॉल करेंगे तो जरूर बता दीजिएगा कि सिमरन कौर ने बोला था आने के लिए या फिर कॉल करने के लिए। मैं आपको नंबर बता देती हूँ 7765 5954, एक बार फिर से 7765 5954। एंड इसके साथ साथ ANPR पावर डिजिटल कार पासपोर्ट जो है वो भी आपको जो है वो मिल जाएगा, जिसमें आपकी सर्विस हिस्ट्री जो है कार की वो पूरी रहती है सेट। सो या सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास।

0: सभी को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
1: आरजे सिमरन के साथ।
2: Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
3: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: देखो आजकल कुछ भी वायरल हो जाता है, कुछ वायरल अच्छे होते हैं और कुछ वायरल होते हैं भाई यार ये क्या ही है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ व्हाट द वायरल ये बात है।
0: हां जी जैसे कि आपको पता है कि गर्मी के टाइम पे कॉफी जो है लोग कम कर देते, लेकिन कॉफी को पीने का एक नया तरीका निकाला है, कोला कॉफी, कोला मिक्स कर रहे हैं कॉफी के अंदर और ये काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है अपने कतर में और लोग पी भी रहे हैं। सो अगर आप में से किसी ने ये कोला कॉफी ट्रेंड ट्राई किया तो मुझे बताइएगा कैसा लगा, फिर मैं ट्राई कर लूंगी क्योंकि आई लव कॉफी यार। मैं अभी तक भी गर्म कॉफी भी पीती हूँ, जितनी मर्जी गर्मी हो जाए मुझे ब्लैक कॉफी बहुत ज्यादा पसंद है पिछले एक साल से। उससे पहले मतलब चाय तो मुझे है ही, ऑफ कोर्स चाय का कोई मुकाबला नहीं है। चाय बेबी तुम मेरे से कभी मत रूठना ठीक है, क्योंकि तुम मेरे सिर दर्द का इलाज हो। सो या ब्लैक कॉफी इज आल्सो गुड, बट कोई भी चीज लिमिट में अच्छी लगती है। बट ये कोला मिक्स करके कैसी लग रही है वो आप मुझे बताइएगा अगर आपने ट्राई किया है तो। सिमरन गौरी आपके साथ, जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वोलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई?
2: अरे भाई वहाँ ट्रेन्ड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वोलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वोलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765 5954। वैल्वोलिन, ड्रिवन बाई ट्रस्ट, पावर्ड बाई क्वालिटी।

आज जिस फिल्म के बारे में मैं ट्रिविया श्रिविया में बात करने वाली हूँ भाई, वो तो मुझे लगता है कि आप लोगों की भी फेवरेट होगी। लेकिन ये टाइटल शुरू से नहीं रखा गया था, इस फिल्म का टाइटल था पहले दिल तो हमने दिया सनम। सो या ऐश्वर्या राय का जो फर्स्ट सीन रहता है वो रेत में से भागते हुए आ रही होती है ना कच्छ में, सो वो जो सीन था उन्होंने नंगे पांव किया था, 35 डिग्री का टेम्परेचर था एंड संजय लीला भंसाली बहुत ज्यादा इंप्रेस हो गए थे कि भाई अब बंदी ने कितना बढ़िया किया है रोल, मतलब जो सीन है वो किया है। सो या राजा हिंदुस्तानी की स्क्रीनिंग जब थी ना तब ऐश्वर्या राय संजय लीला भंसाली से मिली और हाथ मिलाया और बोली कि खामोशी में जो उनका काम था उनको बहुत ज्यादा पसंद आया। एंड संजय लीला भंसाली ने ऐश्वर्या राय के चेहरे की तरफ देखा और उनको लगा कि उनकी आंखों में वो बात है, वो फायर है जो कि वो अपनी अगली फिल्म के लिए ढूंढ रहे हैं जिस कैरेक्टर का नाम है नंदिनी। और उस टाइम पे उन्होंने बोला है कि ये तो मेरी नंदिनी है। सो या पहले उनको लग नहीं रहा था कि भाई ये रोल जो है वो यू नो ऐश्वर्या राय कर लेगी, और क्योंकि वो एकदम वेस्टर्न लुक के एंड ऑल, कहते हैं कि भाई इनके बाल बांधो और इनको ट्रेडिशनल लुक दो और ऑल सेट है यार, मतलब फिल्म के लिए। और ये प्रूव किया भी ऐश्वर्या राय ने। वापस लौट के और भी इस फिल्म के बारे में बातें बताऊंगी। सुनते रहो रेडियो ऑलिव कोर, कहते रहो जियो बिंदास।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM।
1: मैं हूँ अदा शर्मा और आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3।
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के, तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ।
4: Zabardast evening, make you drive golden with.
5: Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: आज जब मैं हम दिल दे चुके सनम फिल्म के बारे में बात कर रही हूँ तो बहुत सारी मेमोरीज है यार इस फिल्म की। प्यार मोहब्बत और ऐसा बोला जाता है कि इनका रियल लाइफ रोमांस जो था वो इस फिल्म में था एंड उनका तो सभी को पता है, उनके अफेयर के बारे में सबको पता है। एंड संजय लीला भंसाली एंड इस्माइल दरबार, अगर इस म्यूजिक के बारे में बात करें, भाई 2 साल लगाए थे इन्होंने इस फिल्म के म्यूजिक के लिए, तभी म्यूजिक जो है वो इतना ज्यादा हिट है। एंड ये जो गाना था ना, तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती हुई, के ने सुबह 4 बजे इसको रिकॉर्ड किया था। एंड उसमें समीर जो है सलमान खान, उसकी एक हैबिट होती है ना, वो ऐसे आसमान की तरफ यू नो ऊपर देख के वो जो है वो यू नो बात किया करता है अपने फादर की, जो फादर उनके है नहीं है। सो ये रियल लाइफ था एक्चुअली, जो डायरेक्टर संजय लीला भंसाली थे वो बचपन में इसी तरह से किया करते थे, तो वो जो चीज थी वो सलमान खान को इस यू नो फिल्म में एक्ट करने के लिए दी गई थी। सो बहुत सारी बातें यार इसके बारे में बताती रहूंगी, बातें खत्म ही नहीं होनी है। सुंदरी रेडियो ऑलिव गोर के जरिए जी ओ बिंदास, और इसी घंटे नेम गेम भी खेलने वाले हैं, तैयार हो जाइएगा।
1: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: are listening to Radio Olive 106.3 FM.
1: यार कार सर्विस के लिए बेस्ट और ट्रस्टेड जगह कौन सी है?
2: सलवा रोड पर वैल्वलिन AMTC, क्विक सर्विस और नो टेंशन।
1: चीप ऑयल पर भरोसा नहीं होता है भाई।
2: अरे भाई वहाँ ट्रेंड एक्सपर्ट्स हैं, सिर्फ जेन्युइन वैल्वलिन ऑयल, ओरिजिनल पार्ट्स और प्रीमियम फिल्टर्स यूज करते हैं।
3: विजिट वैल्वलिन AMTC सलवा रोड या कॉल करें 7765-5954। वैल्वलिन ड्रिवन बाय ट्रस्ट पावर्ड बाय क्वालिटी।
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, कतर की नंबर वन आरजे सिमरन के
5: साथ। Zabardast evening, make you drive golden with. Biggest jewelry festival is now happening at Joyalukkas. Joyalukkas brings you a golden chance to save 40% off on making charges for gold and diamond jewelry.
6: Lulu, hypermarkets, supermarkets and department stores, where the world comes to shop.

0: ओए यार, जो रियलिटी चेक में आपको बताने वाली हूँ बहुत दर्दीला होने वाला है।
1: रेडियो ऑलिव पर आरजे सिमरन के साथ।
0: ऑल राइट, पहली बात तो ये चीज, किसी ना किसी यू नो स्टेज पे किसी ना किसी के साथ ये बात जरूर होती है कि पहले होगी उम्र भर की बात, पहले होगी उम्र भर की बात और फिर उम्र भर बात ही नहीं होगी। हाय यार, बहुत बड़ी बात बोल दी है किसी ने। सो जैसे ही मैंने ये लाइन बोली, आई एम श्योर आपके जहन में किसी ना किसी का चेहरा पॉप अप हो गया होगा ऑलरेडी, कि जिससे हम उम्र भर के लिए बात करते थे और फिर अब ऐसी सिचुएशन है कि अभी उम्र भर बात ही नहीं होनी है। दैट्स लाइफ यार। और बहुत स्ट्रेंज होता है, कभी कभी हम बैठ के सोचते हैं वो पुरानी बातों को जहां पर हम बात करते थे पूरी यू नो जिंदगी के लिए, पूरी उम्र के लिए, और फिर अब ऐसा है कि पूरी उम्र बात ही नहीं होनी है। सिमरन कौर आपके साथ, जियो बिंदास। बस यही दुआ करूंगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई बहुत ऐसा खास इंसान है ना, तो आप लोगों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर कोई हमारी जिंदगी में खास नहीं है तो गॉड उसको रिमूव कर जाता है हमारी लाइफ से, बट हम एक्सेप्ट करने में हमको टाइम लगता है जब तक उसका रिप्लेसमेंट नहीं आता है। जियो बिंदास।

0: जाते हैं दिल हार के। लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त गदर की नंबर वन आरजे
1: सिमरन के साथ।
2: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
3: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

सोनियों की दादी की हलचल सत श्री अकाल सिमरन कौर है आपके साथ। सो नेम गेम में मैं अब लेने वाली हूँ आप सबके नाम। अगर आप चाहते हैं कि आपका नाम रेडियो पे लिया जाना चाहिए क्योंकि सिमरन कौर मैं तुम्हारा शो रोज सुनता हूँ यार या फिर सुनती हूँ, तो क्विकली मैं मेरा आपको व्हाट्सएप का नंबर बता रही हूँ। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ आप अपना नाम लिख के मुझे भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 3311106 जी 3311106। इस नंबर पे सिर्फ और सिर्फ अपना नाम लिख के भेज दीजिए। चलिए स्टार्ट कर रही हूँ। मिस्टर सामी दियार मोहम्मद रवि सैमसुल जैस सैमोन अब्रार नजीमुल्ला माही सईद जी शाबाज जी नौमान जी सबीहा जी सबीहा अली सॉरी एंड अदनान जी थैंक यू सो मच नौरीन जी थैंक यू सो मच दानिश जी थैंक यू सो मच शेख साहब थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए श्याम जी थैंक यू सो मच सैयद जी थैंक यू सो मच करण जी थैंक यू सो मच राकेश जी थैंक यू सो मच सोनाली जी थैंक यू सो मच। ये दोस्त हैं इन्होंने सबने नाम लिख के भेजा है। सो जब आप बहुत सारे नाम लिखते हैं ना तो मेक श्योर कि एक के बाद एक नाम लिखिए क्योंकि जब इकट्ठे लिख के भेजोगे तो मैसेज पे मुझे वो पूरे नाम नहीं दिखते और मैसेज मैं ओपन नहीं करती हूँ जब मैं नाम पढ़ रही होती हूँ। तो कामरान जी थैंक यू सो मच महरूज जी थैंक यू सो मच गणेश जी थैंक यू सो मच अक्रम जी थैंक यू सो मच जीवा जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए सिंह साहब थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। क्विकली नाम लिख के भेजो फटाफट से फिर अगला गाना आने वाला है। लतीफ जी थैंक यू सो मच यासीन जी थैंक यू सो मच कृष्ण जी थैंक यू सो मच शाहबाज जी थैंक यू सो मच एंड दैट्स इट फॉर नाउ। सलीम जी थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। आप जिन जिन के मैंने नाम ले लिए हैं अब आप थैंक यू लिखो और अपना फेवरेट वाला ही मुझे बना के भेजो।

0: सुनते हैं नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Hi everyone, मैं हूँ अरमान मलिक.
2: अरमान मलिक.
3: मैं नंबर वन.
1: 106.3 FM, Radio Olive. Jio Bindas.
0: Olive Suno Radio Network, Qatar's number one Asian radio network.
3: Radio Olive, I'm number one.
4: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त. कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
5: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलू हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

0: अच्छा मुझे ये बताओ, जो कल हमने एक वीडियो अपलोड की थी आपने देखी, परसों जो अपलोड की थी वो देखी, अरे उससे पहले भी अपलोड की थी, अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो जरूर देखी होगी। आपके साथ देखो यार, जरूरी है अगर आप हमें रेडियो पे सुनते हैं तो रेडियो ऑलिव के सोशल मीडिया को भी फॉलो करना जरूरी है, क्योंकि आजकल अगर आप न्यूज चैनल नहीं देख रहे हो या न्यूज़पेपर नहीं पढ़ रहे हो तो सोशल मीडिया पे तो हर कोई है, तो सोशल मीडिया पे आपको हर खबर जो है वो मिल जाती है। बट सोशल मीडिया की सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप चीज देख रहे हैं हर चीज पे भरोसा मत करिए, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, जो कि आपको हमारे रेडियो ऑलिव के पेज पे मिलती है, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, है ना। सो जो भी इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट करेंगे वो 100% सही होगी। सो ध्यान रखिएगा और फॉलो कर लीजिएगा रेडियो ऑलिव को, और बहुत सारे फनी कॉन्टेंट जो है हम टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए पोस्ट करते रहते हैं और ट्रेंड को फॉलो करते रहते हैं। सो यार जरूर देखिएगा एंड मेक श्योर कि आपके फोन में रेडियो ऑलिव की एप्लीकेशन जरूर होनी चाहिए, ताकि जब भी आपका मन करे, बहुत सारे लोग छुट्टी पे जा रहे हैं यार, कहते सिमरन आपको मिस करेंगे, क्यों करेंगे यार, एप्लीकेशन डाउनलोड करो और सिमरन कौर का शो एक दिन भी मिस नहीं होना चाहिए। जियो बिंदास।
1: रेडियो ऑलिव पर आने वाला गाना कूल सॉन्ग ऑफ द आवर।
2: क्या बात है सर, क्या पर ये बात है।

0: है दिल हार के, लड़की को पसंद है कड़क चाय मलाई मार के। तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त, गदर की नंबर वन आरजे सिमरन के
1: साथ। जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास। जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी।
2: लुलू, हाइपरमार्केट्स, सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स, वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप।

जेंजी जिस तरह से सारे एस्थेटिक का ध्यान रखते हैं, वैसे उनके लिए भी एयरपोर्ट भी ऐसा एस्थेटिक हो और ऐसा लाउंज हो, उस चीज का भी ध्यान रखा जा रहा है। नहीं बता था यार, आपको बता देती हूँ। मैं जी सुनियो की दादी की हालचाल, सत श्री अकाल, सिमरन और कौर है आपके साथ। सो जेंजी मतलब ये पहला ऐसा जेंजी इंस्पायर्ड स्पेशल लाउंज है जो कि आपको बेंगलुरु के टर्मिनल 2 में मिलेगा, जहां पर उनके हिसाब से जो डिजाइन, वाइब्रेंट लाइफस्टाइल और सब कुछ ऐसे स्पेस की गई है जो कि एस्थेटिक लग रही है, उस हिसाब से डिजाइन किया गया। भाई साहब अलग लेवल है यार। और इसमें आप 24 आवर डेली ये ओपन होता है और मैक्सिमम 3 घंटे तक आप जो है वो इसमें रह सकते हैं। सो काफी इंटरेस्टिंग चीज है कि एस्थेटिक माहौल जो है आपको मिलेगा एंड मतलब मजेदार माहौल है। जेंजी के हिसाब से उनको मजा आने वाला है इसमें। अगर आपको इसके बारे में पता था तो मुझे बताइएगा कि आपने कभी विजिट किया है, अगर नहीं पता था तो यू वेलकम, मैंने बता दिया यार। सुंदर रेडियो ऑलिम्पुर खेद्रो जियो।

0: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM.
1: Fresh on the grill, slow cooked mandi, perfectly spiced prawns, and that special chutney. No noise, no drama, just seafood done right. BBQ fish, crabs, prawns, crafted with patience, served with pride. Danatal Pahar, the ultimate Qatari adventure. Souq Waqif, Al Khul.
2: इसके स्वैग पे मुंडे जाते हैं दिल हार के. लड़की को पसंद है कड़क चाय, मलाई मार के. भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे
3: आरजे सिमरन के साथ
4: जबरदस्त इवनिंग मेक यू ड्राइव गोल्डन विद
5: बिगेस्ट ज्वेलरी फेस्टिवल इज नाउ हैपनिंग एट जोयालिकास. जोयालिकास ब्रिंग्स यू अ गोल्डन चांस टू सेव 40% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस फॉर गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी.
6: लुलु हाइपरमार्केट्स सुपरमार्केट्स एंड डिपार्टमेंट स्टोर्स वेयर द वर्ल्ड कम्स टू शॉप.

गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है यस ऑफ कोर्स मिडनाइट लाउंज. सो फ्राइडे की सबसे बुरी बात पता है क्या है? जब वो खत्म हो जाता है. कल का दिन काफी ज्यादा अच्छा था. फाइनली स्पाइडरमैन की न्यू मूवी देखने का मौका मिला. थिएटर फुल था, बहुत सारे लोग थे, अच्छा खाना भी खाया और ऑनेस्टली बहुत दिनों के बाद ऐसा लगा कि फोन से ज्यादा लोगों के साथ वक्त स्पेंड किया है. सो मूवी देखते देखते एक बात रियलाइज हुई कि स्पाइडरमैन हो या हम, सबकी लाइफ में एक कॉमन चीज होती है, वो है बैलेंस. पीटर पार्कर दुनिया बचाता है लेकिन अपनी पर्सनल लाइफ को बैलेंस करने के लिए स्ट्रगल करता रहता है. और हम ऑफिस, फैमिली, फ्रेंड्स, वीकेंड प्लान्स, हर किसी की अपनी एक जगलिंग चल रही होती है. शायद इसीलिए ना स्पाइडरमैन सिर्फ सुपर हीरो नहीं लगता, थोड़ा सा मतलब आपकी और मेरे जैसा लगता है. वैसे मुझे तो फ्राइडे कंप्लीट फील हुआ. मूवी भी थी, फूड भी था और बहुत सारे लोग भी थे. सो यू टेल मी कि आपका वीकेंड का सबसे अच्छा मोमेंट क्या था? व्हाट यू हैड लाइक, क्या आपको सबसे बेस्ट लगा कल खाने में, घूमने में, या फिर आपने कल पूरा दिन घर पर ही चिल मारा था? सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: ये है मिडनाइट लाउंज।
1: यू आर लिसनिंग टू कतार्स नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।

कभी किसी किताब को दूसरी बार पढ़ा है आपने और लगा हो कि यार ये तो पहले ऐसी नहीं थी? एक्चुअली किताब नहीं बदलती, हम बदल जाते हैं। इसीलिए दुनिया की एक फेमस बुक है द लिटिल प्रिंस, इसकी बात मैं पहले भी कर चुकी हूँ, पर आज की जनरेशन के हिसाब से मतलब इसे दोबारा आप पढ़ सकते हो। बचपन में इसको पढ़ोगे तो अलग लगेगी, ठीक है, थोड़ा बड़े होकर अलग लगेगी, और ज़िंदगी थोड़ी और सिखा देती है तो ये फिर थोड़ी अलग लगने लगती है। सो इसकी एक लाइन जो है वो मुझे बहुत पसंद है, वॉट इज़ एसेंशियल इज़ इनविजिबल टू द आईज। ये मैंने आपको पहले भी बताया, और ऐसी बहुत सारी और भी किताबें हैं, बहुत ही सिंपल सी बातें लेकिन वो आपको बहुत कुछ सिखा कर जाती है, लाइफ टाइम यू नो कंपेनियंस बन जाते हैं। सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि अगर आपको अपनी लाइफ की किताब दोबारा यू नो पहले जैसे पढ़ने को मौका मिले तो वो कौन सी होगी? नंबर है 3311063 एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, और ये है मिडनाइट लाउंज। स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

तो आज एक गाने की कहानी सुनाती हूँ आपको, और ये गाना अगर उस दिन रिजेक्ट हो जाता तो शायद म्यूजिक हिस्ट्री कुछ और होती। सुन रहे हैं आप रेडियो ऑल 106.3 FM, दिस इज मी मुस्कान विद यू, और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज। आपने टाइटैनिक तो देखी होगी और उसका गाना माय हार्ट विल गो ऑन, वो शायद आज भी जनरेशन गुनगुना देती है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायरेक्टर जो है जेम्स, उन्होंने पहले फिल्म में कोई थीम सॉन्ग ही नहीं रखा था, वो चाहते ही नहीं थे सॉन्ग रखना। उन्हें ना लगता था कि कहानी इतनी स्ट्रांग है कि अगला मतलब जो गाना है उसकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन कंपोज़र जो थे उन्होंने चुपचाप एक गाना बनाया और डेमो रिकॉर्ड किया, और उसके बाद ये सुनाया गया, और बस एक गाना फिल्म की पहचान बन गया। कभी कभी ज़िंदगी में भी ऐसा ही होता है ना, जो आइडिया सबसे पहले ऐसे वेस्ट लगता है वही बाद में सबसे बड़ा वाव बन जाता है। इसीलिए अगर कभी किसी ने आपके आइडिया को रिजेक्ट कर दिया हो तो उसे एंड मत समझना, हो सकता है उस कहानी का बेस्ट चैप्टर अभी लिखना बाकी हो। सो आप मुझे बताइए ऐसा कौन सा गाना है जिसे सुनते ही आपको किसी एक खास इंसान की एक खास वक्त की याद आ जाती है। नंबर इज सेम 3311063। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास।

0: ये है मिड नाइट लाउंज।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM, जियो बिंदास।

वेलकम बैक. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल एट 106.3 एफएम. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. कभी ऐसा हुआ है बारिश की पहली बूंद जमीन पर गिरी और अचानक बचपन की याद आ गई, या किसी परफ्यूम की खुशबू आई और बिना किसी वजह किसी पुराने इंसान की याद आ गई. बाय द वे लास्ट वीक, मतलब आज तो अब नया महीना स्टार्ट हो चुका है, पहली तारीख है, मीठा खाना बनता है, पर अभी ऐसा कहा जा रहा था कि लास्ट वीकेंड बारिश होने के चांसेस हैं लाइक वेंसडे और थर्सडे के आसपास. पर ऐसा मतलब बारिश की आवाज़ और बात सुनते ही ऐसा लगता है कि बस कुछ खूबसूरत होने वाला है, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं. साइंस कहता है कि हमारी जो सेंस ऑफ स्मेल है वो सीधा ब्रेन के उस हिस्से में जुड़ी होती है जो मेमोरीज और इमोशंस को स्टोर करता है. इसीलिए एक छोटी सी खुशबू या फिर स्कूल की कोई याद या नानी के घर की याद और कभी मतलब ऐसा इंसान जो शायद हमारे साथ भी ना हो, कितनी अजीब सी बात है, हमें एकदम से याद आ जाती है. फोटोज़ हम देखते हैं, सॉन्ग्स हम सुनते हैं, लेकिन स्मेल यादों को बिना परमिशन के वापस ले आती है. शायद इसीलिए वो बारिश वाली जो खुशबू होती है ना, वो हमेशा हमें याद रहती है. उसमें बचपन भी होता है, उसमें बारिश भी होती है और कभी कभी पूरी ज़िंदगी छुपी होती है. सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू कि कौन सी खुशबू है जो आज भी आपको सीधा किसी पुरानी याद तक लेकर जाती है. कोई पुराना आपका परफ्यूम जो अब शायद मिलना बंद हो गया हो. 3311063 इज माई नंबर. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल. Stay tuned, Jio Bindas.

एक ही रिएक्शन होता था, यार इतना भी बुरा नहीं है, फिर टेस्ट क्यों नहीं आ रहा। और इंटरेस्टिंग बात ये थी कि प्रॉब्लम एयरलाइन शेफ की थी ही नहीं। हमेशा ना साइंस कहता है कि जब हम इतना ऊपर होते हैं, लाइक 35,000 फीट की हाइट पर होते हैं, तो जो प्रेशर होता है और ड्राई एयर होती है, उसकी वजह से हमारे टेस्ट पर ना ऑलमोस्ट 30% तक गिर जाते हैं। सो आज मुझे वही याद आया कि हर पहली तारीख को हम ट्राई करते हैं ट्रैवल करने का, या फिर कुछ अच्छा घर में लेके जाने का, क्योंकि पहली तारीख इज़ ऑलवेज स्पेशल फॉर सैलरी पीपल। आप मुझे बताइए, आप पहली तारीख को सबसे पहले क्या खरीदते हो? 3311063 इज़ माई नंबर। यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, स्टे ट्यून, जियो बिंदास।

सो लेट्स टॉक अबाउट द 5 मिनट रूल. आज रात एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करना, जब आप घर पहुंच जाओ जो मैं बोलने जा रही हूँ उसमें सिर्फ 5 मिनट लगने वाले हैं. सुन रहे हैं आप रेडियो वाले 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. मैं जो बोलने जा रही हूँ वो ध्यान से सुनिए और हो सकता है कि आपका स्ट्रेस भी थोड़ा सा कम हो जाए. प्रोडक्टिविटी एक्सपर्ट्स एक सिंपल सा रूल बताते हैं, अगर कोई काम 5 मिनट या उससे कम में हो सकता है तो उसे तुरंत कर लेना चाहिए. और जैसे कि आपका कोई नोटिफिकेशन है, कोई मेल है, कोई रिप्लाई देना है, किसी पानी की बॉटल को रिफिल करना है, टेबल क्लीन करनी है, छोटा सा फ़ोन कॉल करना है, हम सोचते हैं बाद में कर लेंगे. लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि काम से ज़्यादा थकान उस काम को दिमाग में लेकर घूमने से होती है. मतलब मैंने ये एक्सपीरियंस किया है इसलिए आपको बता रही हूँ. और जब वो छोटा सा काम कंप्लीट हो जाता है तो एक अजीब सी रिलीफ मिलती है. शायद इसीलिए ज़िंदगी भी हमें एक लेसन देती है कि हर प्रॉब्लम को माउंटेन मत बनाओ. कभी कभी वो सिर्फ 5 मिनट मांग रही होती है. सो आपका जो आज का सवाल है वो यही है कि ऐसा कौन सा छोटा सा काम है जो आप पिछले कई दिनों से बाद में बोलकर टाल रहे हो, जैसे कि किसी को कॉल करना या फिर कोई मेल या फिर कोई इंपॉर्टेंट चीज़ें. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव, नंबर है 3311063. स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

0: आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास।
1: ये है मिडनाइट लाउंज।
2: ये है मिडनाइट लाउंज।

एंटरटेनमेंट की या कोई सीमा नहीं, बनाइए अपने मॉर्निंग को बिंदास मॉर्निंग। बिंदास मॉर्निंग हर सुबह 6 से 10 ओनली ऑन रेडियो ओलिव 106.3 एफएम जियो बिंदास। बिंदास मॉर्निंग यू आर लिसनिंग टू रेडियो ओलिव 106.3 एफएम।

सो आई हैव अ यू नो गुड थिंग फॉर यू. आज एक मूवी की बात करती हूँ जिसमें ना कोई डेंजरस विलन था, ना कोई रिवेंज था, ना कोई मास्टरमाइंड था, और फिर भी वो दुनिया की सबसे इंस्पायरिंग फिल्म्स में से एक बन जाती है. यू आर लिसनिंग रेडियो ऑल 106.3 FM. दिस इज मी मुस्कान विद यू और शो का नाम है मिडनाइट लाउंज. सो मूवी का नाम है द परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस. पहले मैं आपको इस मतलब मूवी के बारे में और इसकी एक बुक है उसके बारे में बता चुकी हूँ. विल स्मिथ की ये फिल्म जो है वो हमें एक बहुत ही अलग बात सिखाती है. कभी कभी लाइफ का सबसे बड़ा विलन जो है कोई इंसान नहीं होता बल्कि सर्कमस्टांसेस होते हैं. फाइनेंशियल प्रॉब्लम, रिजेक्शन, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, और वो दिन जब लगता है कि सब कुछ ख़त्म हो रहा है. सो इस फिल्म में हीरो किसी विलन से नहीं लड़ता, वो हर सुबह उठकर अपनी सिचुएशन से लड़ता है. और शायद हम सब भी अपनी अपनी लाइफ में वही कर रहे होते हैं. हर किसी की एक इनविजिबल बैटल चल रही होती है जो स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती. सो आप मुझे बताइए, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी फिल्म है जिसने बिना किसी विलन के भी आपको बहुत कुछ सिखाया है. 3311106 इज माई नंबर एंड यू आर लिसनिंग रेडियो ऑलिव. स्टे ट्यून्ड. जियो बिंदास.

So, यहाँ पर आई हैव टू से कि मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन उससे पहले आज एक खूबसूरत जापनीज वर्ड की बात करते हैं, सुंडोकू. ठीक है, इसका मतलब है किताबें खरीदने जाना. ठीक है, अब और उन्हें पढ़ने के बजाय शेल्फ पर जमा करते जाना, मतलब आप बुक्स खरीदते तो हो लेकिन पढ़ते नहीं हो, अपने बुक शेल्फ में अपने यू नो रूम में बस सजा कर रख देते हो. सच बताऊं, अगर आप बुक लवर हैं तो हो सकता है कि आप इस सुंडोको के शिकार हों. नई बुक दिखी और कवर पसंद आया और रिव्यू अच्छा था, ऑर्डर कर ली, फिर भी शेल्फ पर रखी रह जाती है और हम सोचते हैं कि नेक्स्ट वीकेंड से शुरू करेंगे या बस अब आज से शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे. लेकिन मुझे लगता है कि अनरीड बुक्स भी बुरी चीज़ नहीं होती, वो हमें याद दिलाती रहती है कि सीखने के लिए भी कितनी दुनिया बाकी है. और शायद इसी वजह से यू नो लाइब्रेरी देखकर इतनी ज़्यादा खुशी मिलती है, क्योंकि हर किताब एक नई कॉन्वर्सेशन, एक प्रॉमिस, ये सब लेकर आती है. सो अब अगर आप ऐसे ही और बहुत सारे वर्ड्स सीखना चाहते हैं, सो बस सुनते रहिए रेडियो ऑलिव, क्योंकि ऐसे जापनीज वर्ड्स जिनका मतलब बहुत डीप है वो मैं लेकर आती हूँ. तो आज का वर्ड था सुंडोको. सो इट स्टार्ट विथ टी एंड द स्पेलिंग इज TSONDOHKOO. सो इसका मतलब तो मैंने आपको बता दिया कि एक ऐसी किताब जो आप खरीद तो लेते हो लेकिन उसे पढ़ते नहीं हो, बस सजा कर रख देते हो. सो आपके बुकशेल्फ में वो कौन सी किताब है जो बहुत प्यार से खरीदी थी या किसी ने गिफ्ट की थी लेकिन आज तक पहला चैप्टर भी नहीं पढ़ पाए हो आप. इसी के साथ आई हैव टू से कि मुझे जाना होगा. नंबर सेम 3311063. कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह पर. गुड नाइट, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, जियो बिंदास.

तभी तो पूरे शहर की इवनिंग होती है। ओहो।

0: तो भैया बनाइए अपनी इवनिंग को जबरदस्त कतर की नंबर वन आरजे आरजे सिमरन के साथ जबरदस्त इवनिंग रोज शाम 5 से 9 ओनली ऑन 106.3 रेडियो ओलिव जियो बिंदास
1: आरजे सिमरन के साथ
2: आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM

आप सुन रहे हैं कतर का नंबर वन रेडियो स्टेशन रेडियो ओलिव 106.3 FM. आप सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM. जियो बिंदास.

Pisa's number one radio station. Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

0: अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।
1: अभी मजा आएगा ना भिड़ो।

listening to Radio Olive 106.3 FM. अब सुनिए ऑलिव का जबरदस्त है।

सुन रहे हैं रेडियो ओलिव 106.3 FM जियो बिंदास 106.3 FM।

You are listening to Radio Olive 106.3 FM. Geo Bindas.